हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को. आरजे वेल की तरफ से और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम और 100.7. दोस्तों, और आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे. और क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमें बताइएगा अपने संदेश के जरिए, ठीक है? और जितना तक हमें मालूम है कि जो भी अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं वो शायद पहुंच चुके होंगे, निकल चुके होंगे, या फिर अभी तक घर पर बहुत ही मतलब जल्दी से रेडी हो रहे होंगे शायद. और यस, जो भी निकल चुके हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी पर हो, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और हम दुआ करते हैं कि आज आप सभी का दिन अच्छे से बीते. और यस, और आप सभी ने आज की सुबह बहुत ही अच्छे से शुरुआत की होगी, है कि नहीं? यस, और आपने अभी तक अपने आज के दिन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत, अच्छा वाला मुस्कुराहट के साथ अगर शुरुआत नहीं की है तो आप कर लीजिए, ठीक है? यस, और आरजे वेली के साथ आज प्यार भरी बातें करने के लिए और हंसी मजाक करने के लिए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी दोस्तों. यस, और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज के हमारे हिंदी के सबसे पहले खंड में दोस्तों. यस, और मुझे आप सभी के प्यार भरे संदेशों का भी इंतजार रहेगा. तो चलिए, आप जो भी कर रहे हैं अभी, आप अच्छे से करते रहिए. और आप किसी जगह अपने ऑफिस के लिए हो, या किसी काम के सिलसिले में हो, या किसी सफर के लिए बहुत ही लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, तो भी आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, सही सलामत पहुंचना आप सभी, ठीक है? तो आइए हम भी अपने इस आज के खंड की शुरुआत करते हैं. मेरी तरफ से, आरजे वेली की तरफ से, इस खंड का सबसे पहला गीत तू ही यार मेरा, अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाज में गाया गीत, मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अभी जो हमने गीत सुना था ना, वो था हंसाते हो रुलाते हो हमेशा तुम सताते हो। और ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक जी ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ गाया था, तो आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। तो अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। लेकिन दोस्तों, गीत सुनाने से पहले मैं आप सभी के प्यार भरे संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। यस, हमारे पास पूरे आधे घंटे का समय है, ठीक है। यस, और जैसे कि मैंने कहा था कि आप सभी से कि आप सभी का दिन कैसे शुरुआत हुई, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से शुरुआत हुई होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे, है ना दोस्तों। यस तो चलिए यहाँ पर पीसी जेसिका यान अजय वील से बेनीम ओ वो इन सू जेल अतिले जेल जामन नोम अतिले दोन मंगे नेक्स्ट खा इन पथुम तानो रोंतिया कल लोमी ओ नंग पन नोमी ती दोन लोमी पीसी जेसिका नाम लो तिवेर ओ एल से साल यान हेलो ललवान दम तक इन एफ एम इलो लेट लेट आ अब लोम ओम एम लंगई ओम रोंती आ लोम ओम चिन्ह मई नंग निपो दिहान नाई थे थे इन हिन रोन लेट ले आ लोंगा थारिन छीना हुते मिलो मन पुई छीना मैसेज ते इन बॉय चुंग चुंग तेन मिन रोन थोन छीन ते ही इन फकोम ही कति ngoi ngoi ani ओ इन फेल लोम ओम तक जेत चुआन जामा हियान हेलो अर्जुन वील नमस्ते सुप्रभात रोंतिया यस जाम आपको भी सुप्रभात। और नेक्स्ट सॉन्ग इड्यूटी बुनेन इन तान ले उचिपिया मिबुआ एम एम तान ले दुर्गेश जी ले हितेंद्र दास असम तान ले मिंग चियांग ते आ पाएंगा उमा लुआंगा मिशन वेंग ले पारपारी पुंगाक ते पा बिल कोथिर मोया मुनपुई नुरी साइलो ले पु सामा मते नुपा मिशन वेंग खंग अमित तितान पो ओ चुआन अजय वी एल वो इन चिसेल ना चटक नई आ लुआंग तका इड्यूटी थे ना दू सकना कला ने अरोंतिया जा महियान के छियान पा ही फिल छिन खोप मई अदू सकने ते ही अलू कतिया अमा दू सकना वांग लियाओ लियाओ हियान ओ अमा दू सकना वांग लियाओ लियाओ हियान कहुन मन ते ही अनुआम छीना क ड्यूटी ते ही त्वांग देविन कह मंग छीन नीति खा मिलो शायद सक्सेला दियांगा मिन दू सक तू छियान के नहीं ही कलोम तक जेत ओ जाम तो चलिए फिलहाल मैं अगले गीत की तरफ चलना चाहूंगी। और बस आप सभी से कहना चाहूंगी कि खुश रहिए दोस्तों। जिंदगी ना बहुत ही डिफिकल्ट है। कन बॉयलांग सिया के मानी सिंह नुनछ वाहियान तिरऊ अमारो चु पुई मोबेर चु कंथिन लुंग ही ओ कंथिन लुंग ही इंगे अदु अच्छलम ये अच्छलम दिखा हन गई तो अच्छा गुला अच्छलम रिंगोट खा पंजेल तुरिंग के दू सकते वा शिंग नुन ही चु अशे ओमा अहर सा स्ट्रगल ते कन गाया नी तेरो एंगे मोनी सेक्रिफाइस ते पो गाया तेरो। इसलिए दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग बनिए, ठीक है। आपके साथ जो भी होता है, जिंदगी आपके साथ जो भी करती है, आप उसमें खुश रहिए। जो चीज आपके पास है उसे संभालने के लिए कोशिश कीजिए, उसे प्यार कीजिए। आपके पास अगर प्यार करने वाला इंसान होगा ना, तो भी आप अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझिए। क्योंकि जिंदगी में ना हम मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत पाना किसी के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अगले गीत की तरफ चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाना चाहूंगी मैं। पहले तो नहीं तुम ऐसे थे, पहले तो नहीं तुम ऐसे थे। बहुत ही खूबसूरत गीत चलिए मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

Well, दोस्त उम्मीद मुझे यस उम्मीद है कि आपको ये गीत जरूर पसंद आ रहा होगा. बहुत ही खूबसूरत गीत दोस्तों, दिल टूटने वाला गीत है और नहीं भी. बस इस गीत में ना कन्फ्यूजन वाली चीज है. कि वो पहले तो ऐसे नहीं थे, अब ये क्या हो गया. अक्सर हम ऐसा सोचते हैं और रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं. यस जैसे थे वैसे ही रहिए, ठीक है. और वैसे भी जिंदगी हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, लेकिन जो हर सिचुएशन में दोस्तों खुद को संभाल लेता है ना, वही असली विनर होता है, ठीक है. यस इसलिए कभी कभी जब प्लान के अकॉर्डिंग हमारी जिंदगी नहीं चलती है तो भी आप उदास मत होना और बस आगे की तरफ बढ़ते रहना, ठीक है. यस और मैं आपसे एक बात यस चीज कहना चाहूंगी कि हर रिलेशनशिप में ना दोस्तों दंग लम ही लो तुम सुओ कती नीचुमो कंसे दू नीचू कतिंगे मी ते ही अन दंग लम जेल मैले मो है नूपा इनकारा ते ले इतना नूपा नी नहीं ता तेरो छुआन ऐ फाते पोन लो नहीं ता अनु वाकान है तुन मा आ अनलो इन ये ने जोन लाई टीवी लाई आखान है अन फेल एम एम सी या छुआन अनु वा तिखान फाते अन हन नहीं या ए अन ना आते अन बॉय वे वे या त्यां खान है अन इन मांग आई ना खा अदंग लम वेक जेल नी चुमो खा त्यां खान की तिंगे ए शिंग नुन ही आई नहर छिन ले कती मो गंग ए त्वा चांग हियान चुबांग चुआ तुन हमी लोंगाई ले तू जोंग जोंग देखा ओ मिजो चोंग खेर इन कसुई दुआ चन चुईन लो शिया थियाम लो कलावा लो चेंज सुओ ठीके इन मंग आई ते तान खान लो चेंज लो उला अमै पो अपापो ओ मा ना इन मंग आई अंखान तुन थेंग खान मो तुन आ खान लेन मंग आई रेंग रो मो चेंज सुओ कती नहीं सुमो. इसलिए हमें बदलना नहीं चाहिए, जैसे थे वैसे रहिए और ज्यादा कुछ मत सोचिए. यस मैं चाहती हूँ बस आपको हमेशा जिंदगी में खुशियां मिले, ढेर सारी खुशियां मिले और आपका मतलब आपकी जिंदगी ना बहुत ही स्मूथ फ्लो से चलती रहे. हम यही दुआ करते हैं FM से 100.7 से और जे वियली आप सभी के लिए दुआ करती है दोस्तों. तो आइए फिलहाल मिसेज और रनथिंग ले नुआला, लेकिन मैं इनका आप सभी का संदेश इस गीत के सुनाने के बाद पढ़ना चाहूंगी. तो आइए आप सभी एक दूसरे के साथ प्यार करते रहिए, कभी जुदा मत होना, ठीक है. लव इन टेन रिंग्स ओ इन छेन तेखा का फल लो ओ इन मंगाई तेखा इन वह मंगाई एम उला. अगर मतलब अगर कुछ भी जिंदगी में मतलब झगड़े ये सब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, झगड़े का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिश्ते को तोड़ दें, ठीक है. यस आप हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग ही रखिए जिंदगी में, तो आपको ना ढेर सारी खुशियां जिंदगी में मिलेगी, ठीक है. यस तो चलिए फिलहाल मैं सुनाना चाहूंगी बहुत ही खूबसूरत गीत जुदाई मेरी तरफ से. इस खंड का अगला गीत आप सभी के नाम.

और दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को जुदाई गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। यस, और चलिए आपके संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी, और हमारा समय भी चला जा रहा है। हुनही कल चक थे बोक्सी कनिंग कितानिया हुनही कल चक भी किन कशिया मोजाम अनि तक तक ओ सोन यहाँ पर संदेश आया है मातवांगा मिशन विंग थंग की तरफ से। मिस आर जे वी एल कलोंगाई थरिंग ओले चान कवन लोम लामिन थन सकते पो कशिया आ रोंतिया वन नाम ओम एम एम अनकल चिंतरो अमा आ आर जे नुंग नुंगी ओ मोई दे उपो खा कशिरेंग ए चान ngori salo hian rjvl tuk thar chebe o duty hian jilza ma chau hian nuamati biki kaphal lo bur ke ni po hian nuam kan ti ve tho tur ani ringot duty hian rj than te hi kawangai ve are e abang ami rj than te hi mo nia e aron let le trip turanga yang o phota chuan kung te hian sandesh lamba khachu chhiar to su jilza mati angreng ilo him pui dervel hi chu fiam thu i tho thiam kati te ron ti ai chuan sang pui pa idi a hian a jevel in vai khan chebe ule haron ti a nang po chebe le o chuan ni omoi le nui ri hi shat hi chuan nun hi a har song song thei a lom le next i play le tur kha i tan ka ron than sak che u o ani mo tak tak mo ka har song song i ti lai tak kha poi mo ni kan har song song zel hi o in har song song zel hi lom le kan tum ber chu mo nui chak lo bo yan kan nui lui kan nui lui sham sham thin ta mo e tik tik na kunui lui ngai lo okay chu achan chu in message hian min ti lim the lu tuka ka feel thin ani chu mo kunui lem lem thiam lo meg moi te hian van la namaste duty nom le te mo jilal zam ji ishe ngai lo chuan mahmuni hian RJVL diktia mhangai na hi amakhi kati a social media kan man na satlutuk wang hi ami te kati a in ngai zone na inkara te nupa inkara te mhangai na hi adai to kati mai a tha zong chuan in change turania dang lama wanga in trend care hi a tha lo kati ka ve tak iron soi dang lam na tha lo hi a dang lam na tha lo hi a om sei ma ma em soi do angai thin oh kan sei ze lang mangai na kha kan ngai poi mo baka te ro mangai nai ti sang sang a oma mangai na dong mi a lau po ni ila kan lim em em mai si ya te ro tu ne na chang khan mo mangai na hi dong lau ma ila ka ta tur po ni lau ma se a hetia hla kar hla anga mo kar hla enge distance a kanin biak po khatia kanin englo kan kan kanin kan kanin biak ton na te po hi kan limpui em em ten na te hi mangai na te kha lo ni le loi box si a tro te chaliye filhal main aap sabhi ko sunana chahungi meri taraf se KK ki awaaz mein gaya geet wahi geet ke yes tu jo mila आप सभी के लिए मेरे प्यारे प्यारे लवली लवली स्वीट चार्मिंग हैंडसम उचीपिया के लिए, और शायद वो अभी अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और शायद पहुंच भी चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे अपने ऑफिस, और हम चाहते हैं कि वो आज अच्छे से अपने समय को बिताए चौन और अच्छे से काम करते रहे और अपनी सेहत का भी ख्याल रखे। उचिपिया ही कफियाम बोरबोर छीना मासे अथिनरिम गाय में अलवा मो सुबांगिन अगे नोम ए मेमा, इसलिए हम उनको बहुत मिस करते हैं, और शायद आज
अगर उनके पास टाइम होगा, वक्त होगा, तो हमें संदेश भेजने के लिए एफएम 100.7 पर, तो हम उनका इंतजार करेंगे. ठीक है, यस. तो चलिए, आप सभी का दिन यूं ही अच्छे से बीता रहे दोस्तों. तो आइए मेरे उची पिया का बहुत ही मनपसंदी गीत तू जो मिला, मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा तू जो मिला के आवाज़ में गाया गीत आप सभी को? यस, और अब हम चलेंगे हमारे आज के हिंदी के सबसे पहले खंड का आखिरी गीत दोस्तों सुनाने का समय आ चुका है। क्या करें, आपको छोड़ के जाना तो नहीं चाहते, लेकिन दोस्तों आपकी दो सारचे नुंग नुंगी इस खंड के बाद, मेरे जाने के बाद वो दोबारा हाजिर होगी। आपको हम कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, आप भी हमें अकेला मत छोड़िएगा। जब आप हमारे साथ FM सो ओए पर रहते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें संदेश भेजते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आपसे इस तरह हंसी मजाक करना, प्यार भरी बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का दिन समय बहुत ही अच्छे से बीते दोस्तों। आप सभी अपना अपने अपने काम करते रहें, और आप सभी ने तो वैसे भी खाना भी खा लिया होगा, सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर लिया होगा दोस्तों। मैंने तो अभी नहीं किया है, लेकिन मैं करूँगी इसके बाद। और एक बात जाते जाते मैं आप सभी से कहना चाहूंगी दोस्तों, हमने बहुत ही प्यार भरी बातें कर ली है, और चेंज के बारे में भी हमने बातें कर ली है कि हमें कभी भी अपने किसी के लिए चेंज नहीं होना है, वैसे जैसे थे वैसे ही रहना है, ये बात हमने कह दिया है। और एक बात मैं जाते जाते कहना चाहूंगी कि अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है ना, तो उसे खुश ही रहने दो, ठीक है। जो आपको छोड़ के चला जाता है ना, उसे जाने दो, ठीक है। कलसन तो तू उसे वो खचू, बाय बाय मे रहो। ओ अनमानी खा गई अनगाई लो, ठीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है ना, तो उसे खुश रहने दो, उसके पीछे भाग कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब मत करो दोस्तों, ठीक है। और क्योंकि जो तुम्हारा है ना, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, और वो खुद चलकर आपके पास आएगा, ठीक है। इसलिए जो आपको छोड़कर जा चुके हैं ना, उन्हें जाने दीजिए, उनको याद मत कीजिए, ठीक है। और मेरे दोस्त जामन ने ट्रेन मैसेज रोनलिंग लिया जामा है ना जवियल इप्ले लिया टूर खा इप्ले लिया टूर जोंग जोंग खा छियारी लो मैं यहाँ जो छियारी पे लो आ उमा लुआ मिशन वें खांग लवीन मिशन वें ती टूर ओ अरुण तिया ए ओले कति पल ओ कलो सैनी चुहान जाम, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत आपके अंदर के सोए हुए मूड को जगा दे जगाने वाली गीत मैं आप सभी से शिल्पा राव के बहुत ही खूबसूरत आवाज के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, और मैं वापस आऊंगी दोबारा हिंदी के खंड को लेकर दोस्तों 11:20 पर, ठीक है। 11:20 तब तक आप सभी अपना काम अच्छे से करते रहना, ठीक है। आप जो भी करेंगे अच्छे से करना, ठीक है, और FM सो ओए को कभी कभी सुनते रहना, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये बहुत ही खूबसूरत गीत, इस खंड का आखिरी गीत आप सभी के नाम, और तब तक के लिए दोस्तों आज मेरे को इजाजत दीजिए, ठीक है।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हम दोबारा स्वागत करते हैं हिंदी के आज के हमारे दूसरे खंड पर। दोस्तों और आप सभी के साथ फिर एक बार जुड़ी हैं आप सभी के लिए आरजे वियली, और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम सो 100.7। दोस्तों और दोस्तों, आप सभी ने आरजे साइलो फिल्ते के साथ उनके लाइव शो पर आप सभी ने एंजॉय किया होगा। आप सभी को उन्हें देखकर उनसे बातें करते हुए आप सभी को अच्छा लगा होगा, और हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं दोस्तों, आप सभी का दिन समय अच्छे से बीते। और दोस्तों यस, हमें संदेश भेजना मत भूलिएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा एफएम सो 100.7 पर। दोस्तों और आपके दोस्त आरजे वियली हाजिर है आप सभी के लिए प्यार भरे बातें करने के लिए और हंसी मजाक करने के लिए। दोस्तों तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए हिंदी के गीतों में दोस्तों आरजे वियली के साथ। तो चलिए मैं इस खंड में अब आप सभी को सुनाना चाहूंगी चाहूंगी यस कैसे हुआ, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए इस खंड का सबसे पहला गीत सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ विशाल मिश्रा के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ। दोस्तों, यस, जब हमें किसी से प्यार होता है और वो हमारे दिलो दिमाग में पूरी जगह जगह ले लेते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि वो हमारे लिए इतने जरूरी कैसे बन जाते हैं, है ना दोस्तों। तो आइए, ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे और माँ मुनि की तरफ से एक फरमाइश गीत है, मैं रहूँ या ना रहूँ, उनका बहुत ही मन पसंदी गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगी दोस्तों। यस, लेकिन उनके फरमाइश गीत सुनाने से पहले दोस्तों, यहाँ पर यस माँ मुनि का ही जो संदेश आया है मैं वो पढ़ना चाहूंगी। माहुनिहियान ओ अर्जवियल में रहूं या ना रहूं प्लीज सरोंतिया। यस, उन्होंने प्लीज कहकर उनकी फरमाइश गीत फरमाइश की है दोस्तों। यस, इसलिए हम उन्हें जरूर सुनाएंगे। और दूसरा संदेश आया है अरबिया बारबुंग की तरफ से। अरबिया पारबुंग हियन अर्जे वी एल मेल एम एम नू ए गवन लोम चिबैलु तुकले हरोंतिया ओले नंगपो चिबैले ओ मोदे उदे खा लो प्ले ते ओ कलो गाई थरेंग दोन चेनिया नेक्स्ट खा का उ जामते अनिन इंतान कल्हान बोके हरोंतियानी अरबिया पारबुंग लोम ओम चिनले मई। और दूसरा संदेश आया है छड़े लो लोग ओ एलबी रेंथई की तरफ से। ऐहे जो आरजे नुंग नुंगी तान जो कनी आ ओ कन छ्याड़ लवांग ने किना आरजे नुंग नुंगी तान कन खे खल रही आंग आलबी आर एलबी रेंथई की तरफ से। तो चलिए, फिलहाल आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारी दोस्त अच्छी दोस्त माहुनी की तरफ से उनका मनपसंदी गीत फरमाइश गीत मैं रहूं या ना रहूं अरमान मलिक की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ अरमान मलिक की आवाज़ में गाया गीत मैं रहूं या ना रहूं दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आए होंगे। और इस गीत को फरमाइश करने वाले हमारी दोस्त आरजे मामूनी को तो बिल्कुल पसंद आया होगा और इस गीत को सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। और शायद इस मौसम में बाहर कैसा मौसम चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता दोस्तों। यस, फिलहाल जो भी मौसम चल रहा है उस पे हमारी दोस्त मामूनी ने इस गीत को सुनकर और आप सभी ने भी इस गीत को सुनकर आप सभी ने एंजॉय किया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा इस गीत को सुनते हुए दोस्तों। मैं रहूँ या ना रहूँ, यस, इसलिए दोस्तों हम रहे या ना रहे, कहीं पर भी रहे दोस्तों, हमें ना ऐसा बनना चाहिए कि वो इंसान हमें हमेशा याद करे। यस, हम अपने पल को, हम अपने समय को यादगार बनाने के लिए चलिए पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। यस, आप जहाँ पर भी रहेंगे, किसी के साथ भी रहेंगे, आपके साथ ही कोई भी हो, यस, आप जो भी करते हैं ना दोस्तों, आप ऐसा कीजिए जो सबके दिलों में छा जाए, ठीक है। यस, तो चलिए फिलहाल अगले गीत की तरफ चलते हैं। और अगला गीत सुनाने से पहले एल बी रेंथे ह्यान आरजे वो इन निम्न नॉमले वो इन लाइफ ही कम उठे म्या लो निदंगा कम उठे सी आ आरोन दिया एल बी ह्यान इंगे छन यांगो एल बी शायद आपके पास नेटवर्क की कमी होगी इसलिए आप नहीं देख पाए होंगे तेरो और सिग्नल ते नेटवर्क ते इलो नहीं इन छत लो वांग ते पोनी मई थे या ठीक है। तो चलिए, लेकिन आप जब आपके पास सिग्नल या नेटवर्क होगा तो आप देख सकते हैं जब चाहे, ठीक है। यस, तो चलिए फिलहाल मैं सुनाना चाहूंगी अगला गीत अरिजीत सिंह के आवाज में गाया गीत तुझको मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

जी हाँ दोस्तों, जमाने में कहीं मेरी तरह कभी चाहेगा ना कोई तुझको, जैसे मैंने दिया वैसे पूरी तरह दिल देगा ना कोई तुझको। यस, इसलिए तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप जिस इंसान से जब यस किसी से भी आप मोहब्बत करते हैं ना दोस्तों, एक बहुत दिल से कीजिए दोस्तों, ठीक है। यस, तो आइए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ और आपके संदेश भी मैं उम्मीद करती हूं कि आप हमें संदेश जरूर भेजेंगे और शायद आप अपने अपने किसी कामों पर बिजी होंगे लेकिन फिर भी हमें सुन रहे होंगे दोस्तों। यस, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं अगले गीत की तरफ चलना चाहूंगी। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी जुदाई, बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी के लिए।

वेल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को चदरिया, यस यस, जुदाई गीत, यस, बहुत ही खूबसूरत गीत रेखा भरद्वाज और अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाया गीत दोस्तों आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। बहुत ही खूबसूरत गीत है मेरी तरफ से हमारी कभी ना सुकून आया, यस, ये गीत मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी दोस्तों। सोनू निगम और अलका याग्निक जी की आवाज में गाया गीत है और हम उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि आप सभी अपने अपने जगह पर दोस्तों आप सभी अच्छे से अपने काम कर रहे होंगे और यस, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आप अपने वक्त को बिता रहे होंगे दोस्तों। और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों आप सभी का हम इस तरह एफएम जोई पर, यस, एफएम जोई से आपको गीत सुनाते हुए, आपसे बातें करते हुए, यस, आप सभी का समय अच्छा बनाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए हमारे साथ हिंदी के गीतों में डूब जाइए दोस्तों, यस। तो चलिए फिलहाल अगले गीत की तरफ चलते हैं। अगला गीत दोस्तों, यस, मेरी तरफ से कभी ना सुकून आया, मेरी तरफ से, यस, उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी की आवाज में गाएगी मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ इस गीत को सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। और ये गीत उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी के आवाज में गाया गीत आप सभी को पसंद आए होंगे दोस्तों। और यहाँ पर माहौनी ह्यान RJVL कभी ना सुकून आया नजिया खा कमिथा आ कसौटी जिंदगी की आ प्रेम ले मुक्ति कमिथा आ अलंग नियेत्र खा खुन लाई खान कसौटी जिंदगी आ सीरियल आ खान हे लाही अनमंग नसा खोप मयात्रो। ओ यस, तो मैं खुश हूँ कि मेरी दोस्त माहोनी को ये गीत पसंद आया और उन्होंने अपने संदेश भेजकर मुझे बताया कि उन्हें ये गीत बहुत ही पसंद है। तो उनकी तरह आपको भी मेरे पेश किए गए गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। तो आइए, हमारा समय दोबारा खत्म हो गया है दोस्तों। आप सभी से आखिरी गीत सुनाकर यहाँ से उठने का समय आ चुका है दोस्तों। लेकिन ये आज के लिए हमारे लिए आखिरी खंड नहीं है। हम वापस आएंगे आज के हमारे खंड को समाप्त करने के लिए 2:35 पर दोस्तों। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। आप सभी को हमारे साथ दोबारा जुड़ना है और जुड़ते रहना है दोस्तों। ठीक है, 12 बजे आपके साथ RJ नुंग नुंगी हाजिर होगी दोबारा आप सभी को अपने साथ वेस्टर्न म्यूजिक सुनाने के लिए, गीत सुनाने के लिए दोस्तों। तो आइए सुनते हैं इस खंड का अगला गीत। मैं सुनाना चाहूंगी जागे जागे, बहुत ही खूबसूरत गीत, सोनू निगम और अलका याग्निक जी की आवाज में गाया गीत आप सभी के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, RJ वीरे को इजाजत दीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, हमें साथ देने के लिए। और हम जाते जाते ये बात कहना चाहेंगे कि आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, आज वैसे भी मौसम उतना खराब नहीं है ना दोस्तों। अभी तक बारिश भी नहीं हुई है और हमें बहुत ही अच्छा मौसम दिया है ईश्वर ने, है कि नहीं दोस्तों। आइए आज के हमारे इस समय को, पल को बहुत ही खुशियां से भर देते हैं दोस्तों। आप सभी का इस तरह समय अच्छे से बीतता रहे दोस्तों। तो चलिए, ये आखिरी गीत RJ वीरे की तरफ से, और RJ वीरे को इजाजत दीजिए और मिलते हैं 2:35 पर आप सभी के लिए ये गीत मेरी तरफ से।

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वीली की तरफ से. और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम और 100.7 दोस्तों. और आप सभी ने आरजे नुंगनुंगी के साथ वेस्टर्न म्यूजिक सुन के आप सभी ने एंजॉय किया होगा. और मैं उम्मीद करती हूं कि दोस्तों आपको भी दोबारा मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी एंजॉय करेंगे, आप सभी को अच्छा लगेगा. और आरजे वीली आप सभी के प्यार भरे संदेशों का भी इंतजार करेगी दोस्तों. अगर जब आप हमें संदेश भेजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आप सभी से यूं ही इस तरह बातें करते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है. और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी का दिन अच्छे से बीता होगा. और आज तो हमें दो इंसान ने बहुत ही यहां हमारे स्टूडियो पर आके हमें बहुत ही सरप्राइज दिया है. यस, हमारे आर्टिस्ट में से बहुत ही मशहूर नाम तो अभी मैं नहीं कहूंगी, मैं आपको बाद में बताना चाहूंगी दोस्तों. तो फिलहाल आप सभी का मैं स्वागत करती हूं हमारे आज के हिंदी के आखिरी खंड में दोस्तों. और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी का दिन अच्छे से बीता होगा. तो आइए आज के इस शाम को और हमारे आज के हिंदी के आखिरी खंड को शुरुआत करते हैं दोस्तों. और एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ. अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत अपना बना ले, मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अरिजीत सिंह के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत अपना बना ले आप सभी को शायद जरूर पसंद आया होगा। और यस, तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं हमारे आगे की तरफ। और दोस्तों, हमारा समय पूरे 3 बजे तक है। और वेन सो जाय थिया मिलार एम एम मेन मिनरन तलो आ कन फूल औ ले मैमो यस। और कन लक छिन बोक्सी आ क्या करे और तो चलिए यहाँ पर मैं आपके संदेश की तरफ चलना चाहूंगी फिलहाल। और यस, संदेश आया है अमोस शिलोंग ने नजे मैसेज का दोंग ले लो मया स्वान गुड आफ्टरनून शुभ खूबसूरत आवाज वाली आर जे रोंतिया हैशटैग आर जे एंग नितम तक नुआई ओ हंशियात ले चू गंदम सोंग सोंग मई लोम वन लोमोम हम भी हमने भी आपको अपना सपनों में अपना बना लिया है बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए और आपकी तारीफ के लिए। और वाला साइलाओ ह्यान हेलो आईजेबीएल हेलो इरोन प्लेन ले जनता जाई हाउ छोम पुआल खान मेहरबान गाय था इला इरोन लुमा खान मिंग का नोटिस मन लट्स ओ के इन का लौश लौ पे का मो मिंग तिखा ओ चुआन तू मान से लौ बोगा एल बी रेन से आर जे बी एल वो इन इहुन तो पलो नाई ले तरंग तो मई वुइन ही ngatinge live po ka en ve thailo sms po in in hulo nge lo thleng lo le I play le tur kha I tan yaw le ron dia ngatinge le o yom na lama kha signal a chabak lo niang a lb ole chuan ka chian pa za ma message je ron thlenga chuan message pakati ron thlenga कंसियर डू गेम ओ मसे मिलो खाक पे लोक से छांग तो चलिए फिलहाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को इस खंड का अगला गीत सुनाना चाहूंगी अभिजीत और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत और किया मेरी तरफ से आप सभी के लिए।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अभिजीत और अलका याग्निक जी के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत और क्या दोस्तों आप सभी को पसंद आए होंगे। और तो चलिए मैं जल्दी से चलना चाहूंगी आप सभी के प्यार भरे संदेश की तरफ। और यहाँ पर मेरे दोस्त जामा की तरफ से संदेश आया है। और जामा ही अना जेवी नमस्ते, गुड आफ्टरनून रोंतिया ओले जाम नंग पोले ओ चुआन इसक मैन टॉप खार पुई टूर इन कलो इन रिपोर्ट जुआंगे वो इन सो थिल चूल ने बॉय पुई टूर आ लो ओम वेनुआला ओ बॉय पुई टूर लो ओम वेनुआला हे मि हे टून पो लुमे न दोरा चलंग नेन सब मो जाम चचिन ले मै लोम ओम चिने चुआन next song uchi pietan le fm zo or rimoi run beltu te zong zong tan po otin apuang tu mai mia lovin vl twang tekin ho ang chi oron ti a ole zam kalom lu tuke o nang po twang de win in na tho tur te le o iti tur lo om te po kha twang de win lo thok zel don nia o chuan tu mo thai lo i lo thlan sakha uchi pia mo thlan sakha ngai mi me tu enge apia shat lau mo me shat lau thalak pui top ang chi kha ani boxia tak tak na kha topic kha chu I khar to te me yang o khar to o khar to me yang u o chi pia tin rim don't lat chuan amos shilong hian rj hashtag vl bin ngai lau ang diro aron dia kan ngai lu tuk che o thlakhat ira natna wangin kabausan che a midang ten min ngai lo ma se nang le ma miram lot mi fel nu kha chuan min the hil nga hian karing lau next a I play le tur kha I chian pa o ka chian pa hikmat ali gohati ami le fm fans zong zong tan oron ti ni अमोस बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। और यस, और हम दुआ करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी से होती रहे। यस, और एल बी रिंखे ख्यान अजय अजय भी एल इटोंग रंग लु तुक ओ टोंग रंग आई लोम कच्चा जो मन दोन है ने टाइम कन ने आ तो बुक सी लवा RJ really strong around.

0: Lutuka, Iman Moanika, Inuiri, Nalsi, Ngaitla, Ikam Omla, Wania Ronti. Oh, ni e last segment hi zu message ron in ron ton zur zur le chin box si ya han cha zo ve ki ka du chin box si a kya garu me kung de hian u chi pe zu eng e ani a tin rim i va lau ve eng restaurant a itzo a in zol to em ni hey lai restaurant bang sai tur she lau So I gave a message on Tling Le Atsuan. Or, चलिए फिलहाल मैं आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सभी हमें अपने संदेश के जरिए प्यार भेजते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आपके संदेश को पढ़ना आपसे बातें करना और इस तरह हमारा दिन तो बस यूं ही अच्छे से गुजरता ही है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन भी हमारे साथ हमारी तरह इस तरह अच्छे से गुजर रही होगी दोस्तों तो आइए शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाया गीत सुनाना चाहूंगी छाया है जो दिल पे क्या नशा मेरी तरफ से आप सभी के नाम
1: वाह कितनी खूबसूरत लग रही है

0: Hei hi Akashvani Aizawl FM-za oiza point pasari atanga puan chua ani vuitana kan hun vui khetna chu kan lo mangjauta a ngai thatu zong zong te chunga lom thu kan soya dar thu ma chang hian kan program hi primary channelin aron chhun zomanga ti chuan tlai darli le chan veya kan hun vui ni na kan chan le don ani in zawai in tlai lam hun man nuam ve kule
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया में न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन

0: किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने रांची जिले के खलारी जिले के पिपरवार क्षेत्र के करकट्टा वन में अवैध कोयला खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इसमें लगभग 200 टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला जब्त किया गया है। अधिकारियों ने इस अभियान को क्षेत्र में संगठित कोयला खनन और तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई बताया और कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। विकेटकीपर और बल्लेबाज यस्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Supreme Court today ruled that the process of determining citizenship or declaring an individual a foreigner must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. The Apex Court was hearing a batch of petitions filed by 27 people who had been declared foreigners by the foreigners tribunals in Assam. The Supreme Court set aside the judgments of the Guwahati High Court that had upheld declarations of 27 appellants as foreigners. A bench of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta acknowledged that the state has a legitimate and compelling interest in ensuring that those not legally entitled to Indian citizenship do not obtain it through false claims, misuse of legal process or delay, but stressed that due process must prevail. The Supreme Court today directed the Special Investigation Team SIT constituted by the Uttar Pradesh government on alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple to submit a status report on the investigation. The court also issued notice to the Union Government, the Uttar Pradesh government and the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust on petitions seeking a CBI probe.

आपकी आरजू मोहन पर 100.7 FM जोर में आप सबके साथ दोस्तों आया समय हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों मैं कहना चाहूंगी जिंदगी एक आईना है, जितना आप मुस्कुराओगे उतना ही खूबसूरत दिखोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलना चाहूंगी गीत की ओर, साथ देते रहिएगा। ये रहा सबसे पहले गीत के तौर पे आप सबके लिए तेरे नाम फिल्म का टाइटल सॉन्ग। आप सबके लिए मेरी ओर से ये रहा।

दोस्तों, मैं आपके एसएमएस की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ कई एसएमएस आए हैं। सबसे पहला एसएमएस जो है यहाँ पे पीसी जेसिका की ओर से, इन्होंने कहा है उमान पे इति बाई हुन मन नुआम ओ नेक्स्ट खाइन पथुम ता नो चौन ड्यूटी नुआम बोकले रंती ने। पीसी जेसिका थैंक यू चौन इन तुई तका हुन फंग तोरिन दो सकना कलान चेया तुई तकिन मिल लो गाई था ला चौन इन इहला दू तेंग ते पो खा कन रोन प्ले मई थे या हन सुई वे शिम शिम ला इहला दू खा तरो इलो दम मो पीसी जेसिका चौन हुन तोप थेंग मिल लो मन पुई थेंग एम ओ तरो एंग पो नि से कन लंगई थाक तोर ते तान ओ बियल चुंग की ओर से। यहाँ पे अगला एसएमएस इस तरह है, आरजे वन पे ड्यूटी नॉमले कलोंगाई थरिंग अन्या कलोंगाई थरिंग अन्या इप्ले ले तुरखा बी कुंगते आ काकते पा बिल खथिर माहुनी आरजे मिखी तान ले आरजे वी अली तान कलो हलाना चोन अपुआंग तु माई लविन ले ngai khatu zong zong tan kalo hla ne haron ti ni bi el chong tho hian okay si tara se bi el chong tho ki taraf se sabhi shrotaon ke liye jata hai chuan rj mikhi le rj v elit ta ni lo hlan boka chuan hak te pa te kung te te hian lo ngai thlengei tura ngai bukang o kan lom em em e ke mai ron ti tel boka aur isi tarah agla sms jo hai yahan pe ma wala ki aur se inhone kaha aaj mon pui namaste namaste ron ti a ilo duty ring ni mo is segment hi jo ka ngai sang te anya o next khanguri silo special man rj tams tan le tan ka dedicated duty nom le run ti ni ma wala hian in o he karon duty a ka duty te ka segment te min lo ngai hlut saka kalom em em ni ma wala o chuan in kan hlangai thak tur zong zong te tan karon ti ni box se chuan ya ha pe anglais miss jo he miss wan pui tlai lam chi bai le run ti tu hi sk nam te ti cha hian in heta hian in number hi kan la safe cha lowa chuan safe tur ni em sk nam te ti hian ka safe ton em mi ti khami lo shil lamo chuan tlai lam chi bai nang po chuan kan ngai thak lo le tur te i tan karon tia min lo ngai tha zel turin kan som hal buk chani se mo chuan in i type me ka i type chung hian hla kan lo ngai thle photanga chumi zo a chuan in i type he ti khan hla kan ngai thak zo ve le kalong chhar le don nya o चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत रहेगा दोस्तों कुछ कुछ होता है टाइटल सॉन्ग फिल्म का। ये रहा आप सबके लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों, मैं एसएमएस की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ एसएमएस है, किन की तरफ से देखना चाहूंगी। हाँ, एस के नमते की ओर से इन्होंने कहा है, एस एल के तीखा तिल बोकला ए ओले ओले, एस एल के लंपुम ओ तीखा लोसेफ मई रोय रोनतिया चौन, एस एल के लंपुम चू समलु खाई ती लमतोय अनि ए रोनती नि ए ओके ओके, समलु खाई टिंगिन एस के नमते। Awa han lu e mo ngai thla tu zong zong ta ni ple le tur kha ka ron thlange ron ting hal bok ni SK nam te sam lu kha hian o chuan nang ma tan ka ron til let ve a SK nam te sam lu kha o chuan in tui taka i ngai thla ka tan le ओ ये इथन सख जोंग जोंग ते पोइना तुइ तक कन गई थाक तान का तियांग। और यहां पे अगला एसएमएस जो है लो दिन पुया की ओर से इन्होंने क्या कहा है देखना चाहूंगी। आरजे प्ले ले तुरका नंगमा तान ले लोंगाई थवे जोंग जोंग तान ले, आरजे जोंग जोंग तान ले, आरजे जोंग जोंग मई प्याला मा खान के वाला तान कुंग ते तान पार पारी पु तान ले कठियान ते वेंग संग संग अमी ते तान रोन ते ने लल दिन पुया फलकोन वेंग लाई हियानिन। ओके लल दिन पुया नंग मा मई लविन ओ तुई तक गई थाक तान कन गई थाक ले तुर ते तान करोन ते नी से के वाला दुलाई वाल मोया। ओके इनकी तरफ से यहाँ पे एसएमएस आया है रन्नुई हाल देव ठू तानी फरनु मान पुई नि जाना इन स्वल ngam khopin kung te nen kanin ka pa ma se lung le lama chuan mo kanin ngei lutok ron ti ni ilaple chua ilaple chuan meng moi te an kan tlang wal lai ti a min shil thin kha ka chhuak zuk mai ron ti ni tu na poin lat le ro la lo ma le o inge mo o ang po di se ke wa la tui ta kein lo ngai ilo ngai thak chun zom zel tan kha tyang deuh hlir kha kan la ple deuh mai thei ni a i tan leo leo ka ron tyang a chuan lung le lama in ngai ta ka inom mang khan he lama po in ngai em em a kung te ni na inom zel lo be se ta ila chuan atop mi lo thlen pui ngai ngai bok don nya a हाँ, यहाँ पे मिनाल की ओर से मिनाल अहमद की ओर से एसएमएस आया है। इन्होंने कहा है, हाय आरजे जी, गुड इवनिंग, आप कैसे हैं, आप कैसे हो, आशा है आप अच्छी होगी। थैंक यू। दोस्ती का रिश्ता लफ्जों से बयान नहीं होता, हर दर्द का एहसास हर किसी को नहीं होता, जो निभा दे हर मोड़ पर साथ जिंदगी भर का, वैसा दोस्त हर

किसी के नसीब में नहीं होता। आपका प्लेलिस्ट बहुत अच्छा है, अच्छा है अखे। शाम सुहाना हो और मनपसंद गाना हो, उसका मजा ही कुछ अलग है। थैंक यू आरजे जी, अच्छा गाना बजाने के लिए। ओ यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं भी कहना चाहूंगी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे बहुत सुंदर बातें कही हैं। दोस्ती का रिश्ता जो है केवल लफ्जों से बयान नहीं होता, बहुत ठीक कहा आपने, है ना। दर्द के समय में जब हमें उनकी जरूरत पड़े, तब जब वे साथ नहीं देंगे तो दोस्ती का क्या मतलब, है ना। तो सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारे जरूरतों के समय में ठीक आकर के क्या है हमारा साथ देते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा लगा मिनाल अहमद, जितने भी गीत हम सुनने जा रहे हैं आपके लिए मैं डेडिकेट करती हूँ, ठीक है ना। चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। ये रहा दोस्तों लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में हम सुनेंगे, आप आजमा के देख लीजिएगा, मैं फिलहाल बोल नहीं बताऊंगी, ठीक है ना। ये रहा आप सबके लिए।

दोस्तों, मैं जाना चाहूंगी यहाँ SMS की और मिनाल अहमद अहमद लिखता है, जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है लेकिन गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। बारिश के मौसम में इस तरह का गाना चार चांद लगा दिया। आरजे जी, बारिश में भीगी हुई गाना, इसका तो मजा बहुत अलग है। ठीक कहा, अभी भी यहाँ पे भी बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में ऐसे ही कुछ गीत जो है बहुत ही मेलोडियस है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, सच कहा आपने। और जिंदगी में सब कुछ हाँ मिल सकता है लेकिन गुजरा हुआ वक्त नहीं मिलता, ये भी आपने बहुत सच कहा। और किसी का भरोसा नहीं टूटाना चाहिए, है ना। और क्या है, वक्त जो चले गए हैं उसे हम वापस कभी भी नहीं लौटा सकते, इसीलिए जो वक्त है हमारे पास इसका बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। और भरोसा जो है, दूसरों के भरोसेमंद इंसान बनना दूसरों के लिए, ठीक है ना, बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं कहना चाहूँगी, सबको ईमानदार रहना है। ओके, आप जो लिख रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी एल चुंगथो की ओर से। ठीक है, मिनाल अहमद, आपके लिए जितने भी गीत हम सुनेंगे आपके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ। और यहाँ भी एल चुंगथो की ओर से, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, मासे कलिम एम कलिम एम एम नहीं कसोई फ्याथियाम लो कलिम कलिम वोंग वोंग इप्ले ले तुर जोंग सोंग खांगाई थतु जोंग सोंग तान लिम एम एमिन कलो लाने रोंती ने वहान रुते रेंग एम लिम ही लोमपोई मोत्रो। जिंदगी में तो हाँ मुश्किलें तो आती रहती है, कठिनाइयों को हम धकेलते धकेलते भी क्या है ना, ये हमारा पीछा तो कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन होगा, वक्त आएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, बी एल चुंगथू जो लिख रही है ना, कि ये बहुत खुश हैं, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं मगर ये बहुत बहुत खुश हैं, ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो बी एल चुंगथू, आप हमेशा खुश रहिए इसी तरह, और जितने भी गीत हम प्ले करने जा रहे हैं आपके लिए खुशी खुशी मैं भी यहां से डेडिकेट कर रही हूं, और आपने कहा कि खुशी खुशी आप भी सभी को डेडिकेट कर रहे हैं, ये क्या है ना, जोश जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ना, मुश्किलों की ओर अगर हम देखते ही रहेंगे और लुढ़क के रहेंगे ना, तो अच्छा नहीं लगता, आगे बढ़ना चाहिए। और मुश्किलों की ओर अगर हम नजर करते, उसे सोचते, निराश होते, जिंदगी क्या है व्यतीत करने की अगर कोशिश करेंगे, तो क्या है, हम पीछे छूट जाएंगे। इसी कारण से हमें हमेशा खुश रहने की क्या है कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना, कोशिश। बहुत बहुत अच्छा बीएल चुंगथू, आपके लिए जितने भी गीत हम सुनने जा रहे हैं खास खास तौर से, राइट। एंड यहाँ पे अगला SMS जो है, आरजे मोहन पुई इप्ले ले तुरखा नंगमा तान ले ड्यूटी पुई ते तान ओ रंती ने ही एस के नमते ह्यान रंती आ कवान लोम ए चौन इतान करंती लेट वेले ngala चौन। चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत ये रहा आप सबके लिए, नशा ये प्यार का। दोस्तों, शराब पीकर नशा नहीं करना चाहिए, ये ऐसी वैसी चीजों को है ना, उन चीजों का सेवन करके नशे में पड़ना नहीं चाहिए, गलत तरीके से हमें नशे में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन प्यार का नशा सब पर चढ़ जाए तो क्या है ना, या बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो प्यार नहीं जिससे दूसरों को दुख पहुंचे।

आपके और जो 100.7 FM जो में आप सबके साथ एक बार फिर आया समय फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे SMS आया है पीसी जेसिका की ओर से। इन्होंने लिखा है वो मन पे लोले लेता मो नेक्स्ट का इन पथुम तानो रंतिया चुवागिन पीसी जेसिका लदो एम रातन लंबिया शेरशाह फिल्म ला मो एम कनगाई थांग। खास खास तौर से मैं पीसी जेसिका के लिए इसे डेडिकेट करना चाहूंगी और दोस्तों आप सबके लिए भी। ये गीत वैसे बहुत लोकप्रिय है, यहाँ लगातार हम प्ले करते हैं, लेकिन आप सबको भी पसंद आए हो आएंगे मुझे ऐसा विश्वास है। सो दोस्तों चलना चाहूंगी गीत की ओर। तुरंत ही ये रहा रातन लंबिया शेरशाह फिल्म का बहुत ही प्रसिद्ध गीत।

दोस्तों, मैं जानना चाहूंगी आपके एसएमएस की, और यहाँ एसएमएस आए हैं पीसी जेसिका से। इन्होंने अवश्य ही कहा होगा कि शुक्रिया ओ मोनपु रातन लंबिया ही चो अमोय च्यांग लोम तुन थ्लेंग यान का फोन रिंग टो ना का लमंग चर चर तेने चुवांग तक चाने निया कन रन प्ले ओ पीसी जेसिका तुई तक इलो गई था का वांगिन ले इलो वांगिन मोई ती वांगतिन तरा कन रन प्ले थे वांगत पोइन kan lo me me mani ke ni po chuan ringtone na po mangat ngat tu khai ni ti kha kan chat wang cha chu ni ta ni dosto yahan kai shrota hain jo hame sun rahe hain aap sab ke liye jata hai aur ye agla geet jo hai aap sab ke liye tum mile geet meri taraf se tehe dil se aap sab ke liye jata hai।

दोस्तों, मैं जानना चाहूंगी आपके SMS की और यहाँ हेलेन जित्ती के ई एक दिन गे न्या ओ जित्ती के ई तक ही कशत लौता ने पो नि से हेलेन ने न टंगिन SMS कन हो ही कन छारंगे और जे मन पुई जिबे ले प्लेलिस्ट मोय लम ले मै नेक्स्ट का आर जे मिखी नेन इन तान ल्याव ल्याव करन लाने रन देने ओले केनी पो कन लम एम एम ओ चान हेलेन नि तुई तक का इलोंग इथाक तान कन गै इथाक ले जेल तुर ही तान करंती आ चान यहां पे अगला SMS जो है मिनाल अहमद की ओर से, इन्होंने कहा है सॉन्ग भूल सॉन्ग जो है इन्होंने फरमाइश यहां पे देने की कोशिश की है भूल भुलैया फिल्म भूल भुलैया सिंगर जो है नीरज श्रीधर मिनाल अहमद फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट करीमगंज। ठीक है, मैं ये गाना सुनना चाहूंगा और डेडिकेट करना चाहूंगा सबसे पहले आरजे जी आपके लिए और मेरे पसंदीदा सभी आरजे के लिए और प्रोड्यूसर इंजीनियर टेक्नीशियन सभी सुनने वालों के लिए डेडिकेट रहेगा और मेरे सभी दोस्तों के लिए। मुस्कान का कोई मूल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। दोस्त तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। वाह, क्या शायरी है। जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि ये रुकती कभी नहीं, इसलिए हर पल जी लो इसे, कल का भरोसा कभी नहीं। जी हाँ, कल का भरोसा नहीं है, कल क्या होगा, कल कल हम जिएंगे या नहीं ये भी हमें पता नहीं है, है ना दोस्तों। ऐसा ना हो कि किसी के साथ कुछ हो जाए, मगर मैं कहना चाहूंगी कि कल क्या होने वाला है हमारे साथ किसी को कुछ पता नहीं है। इसीलिए क्या है, आज जो हमें ईश्वर ने दिया है इसे क्या है खूब जी लेना चाहिए, अच्छे काम करते हैं ना दूसरों के लिए वरदान बन करके। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करके हम अगर जिएंगे तो। हाँ, मुस्कान जो है ना इसका कोई मूल नहीं है, हमें ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। रिश्ता सच्चा वो भी बहुत अनमोल होता है, दोस्त सच्ची हो, दोस्ती है ना सच्ची हो तो ये भी अमूल्य है, यानी कि अनमोल है। फिलहाल मैं कहना चाहूंगी आपकी ये फरमाइश गीत जो है इसे मैं 8:30 बजे मैं फिर से लौटूंगी आप सबके लिए, तब अगर मैं प्ले करूं आपके लिए तो आप नाराज तो नहीं होंगे। ये आरजेस चॉइस का समय रहेगा, 8:30 से लेकर के 9 बजे तक आरजेस चॉइस का मेरा सेगमेंट रहेगा और इस सेगमेंट में अपने आरजेस चॉइस में मैं आपके लिए भी वक्त दूंगी। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे एंजॉय एवरीबडी लाइफ स्माइलिंगली, है ना, एंड विथ हैप्पीनेस, ये मैसेज है यहाँ मिनाल की ओर से। एंड अगला SMS यहाँ पे आरबिया की ओर से, इन्होंने कहा है आरजे प्ले मोई मंगे नेक्स्ट इतान आरजे वी आरजे वन पी कठू चिबैलू तुकले रोनतिया एंग पोनी से मोई देव देव खलो प्ले

दोस्तों, अब एक ही गीत सुनने का वक्त आ गया है। जो भी हो, मैं कहना चाहूंगी कि आप सब जुड़े रहिएगा।

FM Zone 100.7 के साथ इस वक्त आप सबके साथ मैं हूँ आपके आरजू मोनपुई 100.7 FM Zone में। दोस्तों मैं जाना चाहूंगी SMS की और यहाँ ललदिन पुई इताई में का लूंगा चांग चे अंगे आ और यहाँ पे मिनाल की ओर से जो करते हैं दोस्ती वो कभी तोड़ा नहीं करते, देते हैं जान मगर आजमाया नहीं करते, हर हाल में रखते हैं दोस्ती का भरोसा, FMZOY किसी के कहने पर सुनना छोड़ा नहीं करते। आई लव FMZOY कह करके मिनाल अहमद ने यहाँ पे हमें SMS दिया है जो बहुत बहुत खूबसूरत है। और इसी तरह FMZOY 100.7 के लिए जुड़े रहने के लिए और ये तसली देने के लिए कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे हमें बहुत बहुत अच्छा लगा है। सो मिनाल आपके लिए खास खास तौर से जो अंतिम गीत के तौर पे हम सुनने जा रहे हैं मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, राइट। एंड यहाँ पे अगला SMS जो है BL सॉन्ग थो की ओर से, इन्होंने कहा है आरजू मोहन पे आराम से ड्यूटी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये भी कितना अच्छा लग रहा है सुन करके। और सुंदर सुंदर गाने बजाओगे वो मैं शिफो की अच्छा रिबिक ललतन सांगी के लिए और कऊ श्यांगी के लिए और आरजे मिखी के लिए डेडिकेट करती हूँ। अपुंग तो आरजे मोनप्रीतान कलौ लम नॉन ले एर उनतिपो कनी भी एल चोंग थो। थैंक यू सो मच। और भी एल चोंग थो आप तो हिंदी में भी लिख सकती हो ना, इसीलिए आप हिंदी में ही लिखा कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो कहा है इसे मैं ध्यान में रखूंगी, ठीक है। सुंदर से सुंदर गाना जो है उसे यहाँ प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ, करती जाऊंगी। आपके लिए खास खास तौर से अंतिम गीत रहेगा और आपने मुझे ये बताया है कि हमेशा मेरा साथ दोगे, ये सुनकर के भी हमें बहुत बहुत अच्छा लगा है। कऊ रिबेक ललतन सांगी कऊ श्याछुंगी अरोंती ते हियान लोंगाई थंगे तुरा गाई बुकंग ओ चान आरजे मिखी तने चान इन हे कन गाई थरिंग बोक्ता इतान ल्याओ ल्याओ करोंती लेदवे ए तुई तकिन लोंगाई थदोन म्या। चलना चाहूंगी अंतिम गीत की ओर। ये रहा दोस्तों समझावा, ये जो है सनम बैंड के वोकलिस्ट सनम की आवाज में, सनमपुरी की आवाज में ये रहा गीत आप सबके लिए मेरी ओर से।

आपके आरजे 101.7 FM जोई में आप सबके साथ एक बार फिर आया समय फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों चलना चाहूंगी मैं गीत की ओर तुरंत ही। ये रहा आरजे चॉइस का समय है, सो सबसे पहले गीत के तौर पे मैं लाई हूँ आप सबके लिए कोई ना। ये जो है गीत भूल चूक माफ फिल्म का बहुत ही लोकप्रिय गीत है आप सबके लिए। ये रहा

दोस्तों मैं जाना चाहूंगी यहाँ SMS की ओर। लल दिन पुया फल कौन वेंग लाई की ओर से इन्होंने कहा है अर्जी प्ले ले तुर्खा नंगमा तान ले लोंगाई थवे जोंग जोंग ता न रोंते नि लल दिन पुया हियर इन लल दिन पुया इतान करों ते ले दवे तो ये तकिन लोंगाई थ दोन ने ओ। और यहाँ पे मिनाल की ओर से जहां लफ्जों का भरोसा कम पड़ जाए, दोस्त की आंखें खुद सब समझ जाएं। वो रिश्ता है जो दिल से दिल तक है, FM जो ओ दोस्ती की मिसाल बन जाए। ये शायरी FM जो ओ स्टेशन के लिए ऑल RJs एंड ऑल स्टाफ। थैंक यू सो मच मिनाल। और आपने जिस गीत के लिए भूल भुलैया के लिए यहाँ पे फरमाइश दिए थे, पता नहीं ये गीत कैसा रहेगा। मेरे RJs चॉइस के बीच में आप यहाँ तशरीफ लाए हैं तो मैं इस गीत को बजाना चाहूंगी आपके लिए खास तौर से। और इसी तरह से ये रहा गीत।

मिनाल जी, आपके फरमाइश गीत भूल भुलैया ट्रैक्ट जो है मैंने प्ले कर लिया है, और आपने यहाँ पे हमें SMS दे करके थैंक यू मैम कह करके हमें SMS दिया है, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। और चलना चाहूंगी अगले SMS की ओर, यहाँ पेल दिन पुया फल कौन व्यंगलाई की ओर से, और जो मोहन पुई प्ले ले तुरखा रोंतिया नंगमा तान लोंगाई थवे जोंग जोंग तान कठियान वेंग संग संग अमी ति तान ले लल दिन पुया फल कोन वेंग लाई क फोन अ चियांग लवा करोन चेले थे लवा पोइलो तो करोन ते ने अन्नी क रिंग आई फोन अ चियांग लवा नि मई थे हे नि लो हे एंगे ने SMS रोन लुत सी लविन एंगे ने थलाक ते एंगे एंगे मनिका निया पोइलम पंगथिल चुनी हाउ लविन मोरोन लुत देवा चांग चानी नंगमा पोइ बेदोन मेल टॉप तानी स्माइली थेन खात्रन थाना हे चाले रिंग पोनी से फोन लो थजे रो से ओ लल दिन पुयै तान कन गै थाक ले तुर करन त्यांगा चोन यहां पे मिंग मोई ते की ओर से इन होने कहा है मा मन पुय नमस्ते। अगला गी ति तान ले लल दिन पुय फल कोन वेंग लाई तान रोन ती ने ओले लल दिन पुय फल कोन वेंग लाई पोन लोंगाई थमे का चोन मिंग मोई ते रन लंग लोल मेया अटॉप खार जाना निया अतोप थे इन मिन लौंगाई थले तुरिन कंसोम चे निसे चुआन। हाँ ठीक है, इसी तरह से अगले गीत की ओर मैं जाना चाहूंगी। अगला गीत जो रहेगा मैं देखना चाहूंगी, ये जो है बहुत ही सुंदर है दोस्तों आप सबके लिए, आवो ना गीत, ठीक है ना। ये गीत आप सबके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगी, ये रहा गीत आप सबके लिए।

दोस्तों, मैं अगले गीत की ओर तुरंत जाना चाहूंगी। ये गीत रहेगा आप सबके लिए, शुरुआत से लेकर के अभी तक जिन्होंने हमें सुना है उन सब के लिए, और इस गीत के बाद मैं SMS की ओर फिर जाना चाहूंगी। ये रहा गीत आप सबके लिए, गहरा हुआ। ये जो है नया गीत है, बहुत ही सुंदर है मेरी तरफ से आप सबके लिए।

दोस्तों, मैं एसएमएस की ओर जाना चाहूंगी। मिनाल अहमद की ओर से एसएमएस इस तरह आया है, आप हो तो हम हैं, आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं, हम रहें या रहें ले हम रहें या ना रहें, लेकिन हमेशा एफएम ज़ोए रहें। ओ एफएम ज़ोए 100.7 के लिए आपने इतना खूबसूरत सा शब्द भेजा है, थैंक यू फॉर दिस मिनाल अहमद। एफएम ज़ोए 100.7 जो है आप सबके लिए हमेशा हमेशा रहेंगे, ये मैं कहना चाहूंगी। और साथ ही साथ जो भी गीत हम सुनने जा रहे हैं आपके लिए मैं यहाँ से फिर से डेडिकेट करती हूँ, ठीक है ना। और यहाँ मिंगमोई ते अल दिन पुया बी एल चोंग थो आर बी हेलेन पी सी जेसिका एलजेट साइलोते एस के नमते हितेंद्र दास इंजवाय तान गोरी साइलोते ओमेगा सांग ते ते के वाल ते मा वाल ते कुंग ते ते एल बी रन थे ते ओ इंजवाय तन जेल जामा मई मिया लविन ओ इंजवाय तन जेल जामा जानिन चो रे रिया मे करन त्यांगा कन गई थाग ले तोर ही। और अगला गीत दोस्तों कम सुंदर नहीं, बहुत बहुत सुंदर है आप सबके लिए, ये रहा।

क्यों दोस्तों, मेरा चॉइस आप सबको पसंद आए या नहीं जरूर बताइएगा, ठीक है। मिनाल अहमद की ओर से इन्होंने कहा है, एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता, एक प्यारी सी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती, एक एहसास जो कभी दुख नहीं देता, और एक रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता, जो है एफएम जो और रिश्ता नहीं टूटा। बहुत सुंदर एफ एम जो 100.7 के लिए इन्होंने जो कुछ भी भेजा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आपने कहा प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया है, ऑसम, थैंक यू मिनाल। और इसी तरह से आप इंजॉय करते जाइएगा गीतों का। मेरा लास्ट सेगमेंट 10 बजे भी रहेगा, उस समय भी आप साथ दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ ये किन का है पता नहीं, इन्होंने बहुत बड़ा लाइक दिया है। हिताहियारी मिरोन थोन तो ही अमिंग लंग लो कन ल सेफ बुक सी लो एंग मरोन सही लो इन ओ एंग पो नि से मिल लो गाय थे तो तोना लाइक मिनरन पे तो खाई चुंगा कन लो मे मे मा 100.7 एफएम जो ओय मिन लोंग आइ थाक वांग ले एंगे मिन गाइ थाजेल तुरिन कन सोंग हाल बोक चेंग अचान कन लास्ट सोंग ही इतान करन ति बोके। ओ ये अंतिम गीत जो है आप सबके लिए खास खास तौर से तहे दिल से मेरी ओर से आप सबके लिए जाता है। सो दोस्तों, ये रहा गीत तेरा साथ ही।

आपकी आरजे मानपुई 100.7 FM जोए में आप सबके साथ दोस्तों आया समय अंतिम सेगमेंट का, यानी कि हिंदी सेगमेंट का ये अंतिम सेगमेंट है और आज की रात के लिए भी ये सबसे अंतिम सेगमेंट है। मैं कहना चाहूंगी दोस्तों, मेरे साथ देने वालों को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी और आप सब साथ देते रहिएगा इसी तरह से। सबसे पहले गीत के की ओर चलते हैं। सबसे पहला गीत इस वक्त रहेगा हमारा, वैसे बहुत सारे ऐसे गीत हैं यहाँ बहुत बहुत सुंदर, लेकिन मैं फिलहाल जाना चाहूंगी इस गीत की ओर। पहला नशा गीत आप सबके लिए ये रहा।

दोस्तों, मैं एसएमएस की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ कई एसएमएस आए हुए हैं। सबसे पहला एसएमएस यहाँ हितेंद्र दास की ओर से। इन्होंने कहा है, हेलो आरजी ऑफ आकाशवाणी आइजोल स्टेशन, एफएम बैंड 100.7 MHz, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग्स शो। टुडे आई एम कमिंग टू माई हाउस 3 days, फॉर आई एम नॉट Okay, you are not home, right? If possible, then please play the song. Song line, Ek Chumma Tu Udhar. Achha, movie Chote Sarkar, 1994 ke. All RJs, all staffs, members of Akashwani Aizawl Station. Aur specially mujhe, Hitendra Das kya hai, dedicate karna chaha rahe hain. And he is also mentioning my friends are Minal, Amal, एंड रेकेविलिक। ओके, इन सब के लिए भी ये डेडिकेट करना चाह रहे हैं। लेकिन हितेंद्र दास, मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्यू लगा चुका है गीत के लिए। जब मैं फिर लौटूंगी तब आपके लिए ये गीत जो है अवश्य प्ले करूंगी। लेकिन फिलहाल बहुत मजेदार गीत, खूबसूरत गीत आपके लिए हैं। सो सारे के सारे गीत आपके लिए जाता है और आपके दोस्तों के लिए भी। आपने हम सबको यहाँ डेडिकेट किया है, हम बहुत बहुत खुश हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आर जो मोनपु ये प्ले ले तुर्खा नंगमा तान ले लोंगाई सफे जोंग जोंग तान ले आर जे तान ले कठियान ते वेंग संग संग अमीते तान रोंती आ लल दिन पुया फल कौन वेंग लाई हियान इन लल दिन पुया फल कौन वेंग लाई मिन लौला मेन पुई चर चर चुंगा कन लोम एम एम ए ओ चुआन कन गे थाक तुर जोंग जोंग तान करोन ति बोके के वाल हियान इन बहन मोन पुई रोन ति तान इ फर्नु मोन पुई ख बहन मोन पुई न रोन थाक ता ओके भाई ओ बहन ले भाई अमोय तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या तुम ठीक हो रंते? वाह, खुई टंगी रंजेरा कुंग ते न जिर तीर से चुनी लो मो एंग पोनी से मैं बहुत ठीक हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हिंदी से इसी तरह लिखते रहिए। बो तम पे बो लो दिरो छंचुमो इरन थ्याम तोलु तो चो वांग चो आने ने चो के वाला vi kung tien sia se ka van ti em oi i ron ti vel i ron ton vel hi mo ngai no mat ti ve don lo tok chuan tui ta kai ngai thak tan kan ngai thak le tur zong zong i tan ka ron tiang a chuan pc ma zari sorry ming moi te hian in lo ngai thave nge yang a mo hei ke va la hian ma son te me nia o i nau hian nge i u hian a eng po ni se ke va la bhai आप पूरे गीत

सुन लीजिएगा और उसके बाद क्या है, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। और मिलो मिन पुई चर चर दोन्या। ओ मिनाल अहमद की ओर से यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा कुछ लिख के दिया है। आरजे मैं और मेरी पत्नी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और रुकिए, हाँ, सुनते हुए खाना खा रहे हैं। अच्छा, हैप्पी ईटिंग, आप अच्छी तरह से खाना खाइएगा, ठीक है। कुछ अच्छा वाला रोमांटिक वाला गाना प्ले कीजिए। कोई दोस्त कभी पुराना नहीं होता, कुछ दिन बात ना करने से बेगाना नहीं होता। दोस्ती में दूरी होती रहती है, पर दूरी का मतलब भुलाना नहीं होता। किसी भी गाने में शामिल कीजिएगा डेडिकेट की जगह मेरे सभी दोस्तों के लिए। और डेडिकेट करने के लिए ये अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, आपकी पत्नी और आप अच्छी तरह से खाइएगा, और गीत जो है आप के लिए मैं यहां से डेडिकेट कर रही हूं, ठीक है, दोनों के लिए खास खास तौर से। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपकी बीबी को भी मेरा नमस्ते कहना। ओके मिनाल, हाँ, आप दोनों के लिए सारे के सारे गीत जाता है। मिंग मोइते लिखता है माम वन पुई इतान लेंगा इतु तेतान रंती ने। ओके थैंक यू। मिंग मोइते मिल लो ला मिन पुई चर्चर है टाइप चर्चर तू ते पुन ला ओम जे लम लो टाइप ले जेल रो नंग पो। और यहाँ पे मा वाला लिखता है जे वन पुई इलास्ट सेगमेंट ने ले तरंग में खम ओम लो वे ओ इस सेगमेंट चु अलू इन नोम पो कती तो तकिन होला दम तकिन लो ड्यूटी ले फतंग चे मंग था मुतुई ले रोंतिया मा वाला हियान मिन रोन मंग था देर तो निन किना के छियार मन लो ते पोल लाव नियांगा। एनीवे कलोम लो तो का मा वाला कन लंगा इतलाक दोर जोंग जोंग इतान करोंती ए ओ। और इसी तरह से मैं अगले गीत की ओर जाना चाहूंगी, तेरा जैसा यार कहाँ, है ना दोस्तों। इसी तरह है गीत आप सबके लिए, ये रहा।

कि आपके SMS की और यहाँ SMS आया है, किन की तरफ से देखना चाहूंगी? प्रिया वर्मा की ओर से इन्होंने क्या कहा है देखना चाहूंगी, बहुत लंबा यहाँ पे। अच्छा, दुर्गेश की ओर से, आरजे सिस्टर मेरे दोस्त हितेंद्र दास को गुड इवनिंग, ये सबसे पहले उन्होंने कहा है। और फिर नेक्स्ट सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं ये मिनाल अहमद और हितेंद्र दास को, ठीक है? दुर्गेश नगनपुर की ओर से हैं और इन्होंने मुझे गुड इवनिंग कहा है। आपको भी नमस्कार, गुड इवनिंग। और मेरा SMS कब पढ़ोगे कह करके आपने बताया, लो पढ़ दिया है ना। हाँ, और इसी तरह जितने भी गीत हम सुनने जाएंगे आपके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ, खास खास स्पेशल रूप से, ठीक है ना? और यहाँ अगला SMS जो है के वाला की ओर से, जैसे हमारे भाई वी कुंती को हिंदी बोलना आता है, ओए थिया मले तप्ता ने। हाँ ठीक है, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। के वाला यहाँ पे हिंदी में लिखने लगा है, मुझे बहुत खुश हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मतलब। हे ही अम जिया ही ले खा गाय दो ना, ले लिन खा गाय दो ना, मैं मोई ते ते ही अन अंशियांग ये मो कशे लो मो चुवांग चुआनिन इंग पोनी से भी कुंग तेर ले तो रा दांग। हाँ, यहाँ पे अगला SMS मैं मोई ते की ओर से, मा मोन पुई उके वालन मिन हाउ अर्जेंटीना तान अर्जेंटीना टन वे सी अत्या नंग इंगे इटन वे अरंतिया कि जो अचक लो लो का चंद्री फुट में अंग तुंगे का चंदों ना चंदों लो पकड़ लो जाना अच्छा जानिन है ताकन ड्यूटी ले तुक तुक बॉक्स या तेरो एंग पोनी से अच्छा वे का चांग ले एन मन एम एम इन कन खुसा चांग ले एन मन लो एम एम इन कन ओम ले बॉक्स या चुवांग चुआन इन चंद चंद खा का चंद वे कनी में ओ मिंग मोई ते आ के वाल ने मिन लो लमेन पुया हे इन छान ते हितेंद्र दास ते दुर्गेश ते चौन इन एंगे नी मिदंग खा मिना लते पन रोन लंग सब सब पे ओ। हाँ, चलना चाहूंगी यहाँ अगले SMS की ओर, जेल इल्जाम की ओर से इन खोम्बान तीतुर कने अंगा और ओ ते कति जो नुआ कति अंग अंग ते इति नानी मो लाइकुम आ कन जाल टन देख दे का चुतिया मुतमा इन का फोन सना कन एन छिन च्या मई चु कल FM जो ओय मानती इन फोन एप्स कन गाय थ च्या मई चु हिंदी RJ कदु MM मई RJ मा मोन पुई अलो ड्यूटी रिंग चुनी इन कबन लोम सी एम RJ मा मोन पुई इप्ले ले तुर खा दु थो तकिनी तान ले RJ वी एलिनेन इन तान स्याल बी क्रिया बिन कथन सखना अपना पंगचे उतवांग तकिन हो अंगचे ओर अंतिने आ रुन लंगता ए इमिंग निची नाक लो लम तो मो इ बॉय व्याव नि खा क रिंग रेगा इन खोम ते इ लोकल ति ना अलो नि आ फकोम थिन ले अनि जेल जामा चोन RJV एलिनेन चोन तुई तका कन गई थाक तान हे स्पेशल एम एम बी क्रिया विन सेल बी क्रिया विन मिन रन थन सका कन लोम एम एम ए ओ। और इसी तरह मैं जाना चाहूंगी लल दिन पुई के SMS की, और इन्होंने क्या कहा है, इ प्ले ले तुरखा नंगमा तान ले RJ मिखिया ले ओ तान रोंतिया चुआनी नंगमा तान कन रोंतिले दिया कन लोम एम एम ए ओ। चौहान, मैं चलना चाहूंगी। हाँ, मिनाल की ओर से यहाँ पे दुर्गेश जी को मेरी तरफ से धन्यवाद डेडिकेट करने के लिए कहा है इन्होंने। और आपको मेरे प्यारे पत्नी जी हेलो बोल रही है, ओ थैंक यू, नमस्कार कह रही है, वह आप की आवाज बहुत स्वीट है बोल रही है, मेरे प्यारी पत्नी। ओ, आपकी स्वीट पत्नी है जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है, ठीक है? आप दोनों इसी तरह से गीतों का मजा लेते रहिएगा। और इसी तरह टाइपिंग चल रहा है, टाइप करने दीजिए दोस्तों को। और तब तक हम चलते हैं हर जन्म के लिए गीत की, और ये रहा गीत आप सबके लिए।

जल्दी जल्दी मैं जाना चाहूंगी आप सबके एसएमएस की ओर। यहां मिंग मोई ते लिखता है मा मोन पुई एसएमएस पांगाई थुन तलंगवे थेलो छना छना सेलिंग तान अरोंती ने ओले छना सेलिंग तान ल्याव ल्याव कंत्यांगा चान मिंग मोई ते छना हियान इन मिन लोंगाई थानी चान इन एसएमएस पांगाई पोखानी न थोन थे थोवा कतिम जाचू इ हे व्हाट्सएप पा खेर नि लो पो खानिन मो माजे खमी पनि खा थेलो वेवे नि चोरिन खत्या इरोंती सखा इचुंगा कन लो मे मे मा चोन छन चोन इन तुइ तकिन लोंगाई थंगे सेमिंग मोइते तान करोन ति लियाउ लियाउ बोके ओ सीजे त हिया नि यस कहलदु अरोंते आ सीजे त पोलो लमेंग कवन लोम एम ओ और इसी तरह यहां पे बहुत सारे एसएमएस हैं यहाँ। थैंक यू कह करके दुर्गेश ने हमें एसएमएस दिया है, आपको बहुत बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना। और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऑल द टाइम 100.7 एफएम जो ओए के साथ, ठीक है। मिनाल अहमद लिखता है यहाँ, मेरी प्यारी पत्नी जी आपका फैन बन गई है मैम, वह आपको बहुत पसंद करती है आपकी आवाज को। थैंक यू मिनाल की पत्नी, प्यारी पत्नी आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से मियाँ बीबी दोनों आप मेरा साथ देते रहिएगा, ठीक है ना। हम इसी तरह से दोस्त दोस्त बन गए हैं, है ना, और हमेशा हमेशा के लिए। 100.7 एफएम जो तो आप सबके लिए है ही। इसी तरह मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप इस वक्त तक मेरा साथ दे रहे हैं। के वाला यहाँ पे लिखता है, बहन मोनपुए शुभ रात्रि, मैं आपके सुरक्षित रूप से ड्यूटी पर लौटने की कामना करता हूँ। वाह क्या लिखता है आज, देखो ये केवाला हिंदी वाहन मोई सोते में वे ओ तिखान मालो सोन जेल लमो चारिन तिहारिन कदेंग लो जेल दोन्या ओ हे केवाला हियानिन मंगठा मिनरन

शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया केवाला मेरा भाई, ठीक है। और यहाँ पे आप सब जिन्होंने हमें यहाँ SMS दिए हैं, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और अंतिम गीत की ओर जाने का समय आ गया है आप सबके लिए। मैं ये अंतिम गीत जो है तहे दिल से स्पेशल रूप से मैं डेडिकेट करना चाहूंगी, और इसी तरह से आपके आरजू मॉन्टी 100.7 FM जोन ओ में आप सबके साथ हमेशा हमेशा खुश रहिएगा, और हमेशा आप सब स्वस्थ रहिएगा। और जब तक मैं ना लौटू तब तक के लिए मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा। आप सबको बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड शुभ शुभ शुभ रात्रि। अंतिम गीत के तौर पे मैया मेनो गीत आप सबके लिए ये रहा।